0: हो गई आंखें, आज पपीते हो गई आंखें।
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार आज पपीते हो गया हमको, आज पपीते हो गया हमको।
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा, प्यार प्यार प्यार ओ राजा, प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज पपीते हो गए आंखें, आज पपीते हो गए आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: चले डर भी आया शर्म भी आई गिर की हमें तो खेले डर भी आया शर्म भी आई गिर की हमें तो खेले पहले ही बाजी न गए हम पहले ही बाजी न गए हम
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा हार हार हार ओ राजा हार हार हार आज पे हो गई आंखें आज पे हो गई आंखें चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए डीराटा डीरा

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बित की जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

तेरा आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पीके आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला का दी

अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए, बेड़ा का डेरा

हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11। किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला का दिला का जो जो जो जो दिला दिला का दिला का जो जो

आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी जाए। डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा डेड़ा टा डेड़ा टा डेड़ा टडा डेड़ा टा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे, रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए, हित हित हित की आए, तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला ता दिला।

0: होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11
1: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
0: किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9 to 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बच गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत पित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत पित की जाए।
2: दिला का दिला चजो यो चजो, दिला दिला चजो।

साजन जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दिलाता

अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिटकी बिटकी जाए।

होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला ता दिला ता जो जो जो जो दिला ता दिला ता जो जो

मगध ढूंढा मगध तुझसा न पाया कोई। हाँ, अपनों ने मुंह को मोड़ा, दुनिया ने साथ छोड़ा, बेबस समझ के सबने बेकस के दिल को तोड़ा। अब तू ही आसरा दे।